0: सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय विशुन देव शर्मा और सुमित्रा राज के भाई स्वगीता, राकेश और अकेशनी के पिता स्वर्गीय चंद्र प्रभा के पति मनोरेवा ऑकलैंड के प्रेम नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज शाम 3 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 39 कैप्रियाना ड्राइव कराका जा सकते हैं या फिर आप विनेश को कॉल कर सकते हैं ऑन 0211-322-413 पर। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय विष्णुदेव शर्मा और सुमित्रा राज के भाई स्वगीता, राकेश और अकेशनी के पिता स्वर्गीय चंद्र प्रभा के पति मनोरवा ऑकलैंड के प्रेम नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज शाम 3 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 39 कैप्रियाना ड्राइव कराका जा सकते हैं या फिर आप विनेश को कॉल कर सकते हैं ऑन 0211-322-413 पर।
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड
3: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी गुड ब्रांच भी है।
4: वेदर अपडेट।
0: बदली सी छाई हुई है और ऐसा ही मौसम आज दिन भर रहने वाला है। मोस्टली क्लाउडी विथ ओड लाइट शावर्स, इधर उधर कुछ बारिश होने की संभावना है, अन्यथा मौसम यूं ही बदली भरा रहेगा आज पूरे दिन के लिए। टेम्परेचर की ओर ध्यान दें तो आज दिन में टेम्परेचर विल गो एज हाई एज 16 डिग्रीज, ओवरनाइट टेम्परेचर आज 12 डिग्रीज तक ड्रॉप होने वाला है।

12:04 हो चुके हैं. इट इज द 18th of July 2026 एंड मैं जिकाश आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आपके साथ में दोबारा शामिल हो चुका हूँ. दो सप्ताह की छुट्टियां हमने बिताई हैं इन द ट्रॉपिकल आइलैंड्स ऑफ फिजी और मज़े ही मज़े किए हैं और एक बार फिर से एकदम से रिफ्रेश होकर आपके साथ हम यहाँ पर शामिल हो चुके हैं. आपके ये दो सप्ते कैसे बीते हैं? मैंने सुना कि इधर न्यूजीलैंड में बड़ी ठंड थी. वेल इन फिजी एज वेल ओवरनाइट टेम्परेचर्स वहाँ पर 18-16 डिग्रीज तक जाते थे तो एकदम से आराम से नींद आ जाती थी. और नॉट ट्राइंग टू मेक यू जेलस लेकिन दिन में भी ठीक ठाक टेम्परेचर था, बहुत गर्मी नहीं थी. And the vibes by the sea were just awesome. I have put up so many pictures on my profile and kuch pictures aapke saath mein hum share karenge on hum's page as well. So keep an eye out for that as well. लेकिन कमिंग बैक टू रियलिटी, आज है शनिवार और रेडियो पब में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं. अभी से लेकर शाम 6 बजे तक मैं आपका साथ देने वाला हूं. बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है इन दी फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स क्योंकि आज यहां पर वी आर होस्टिंग दी माइटी टीम फ्रॉम आयरलैंड इन दी 2026 नेशंस चैम्पियनशिप. तो आज क्या कारनामा यहाँ पर आप देखने वाले हैं. आज शाम खेल होगा बिटवीन न्यूजीलैंड ऑल ब्लैक्स एंड आयरलैंड एट 7:10. जापान और फ्रांस के भी खेल होने वाले हैं इन टोक्यो और ऑस्ट्रेलिया इज टेकिंग ऑन इटली इन पर्थ. तो इस पर भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे. प्लस पिछले कुछ मैचेस पर भी हम बातें करेंगे जो हुए हैं इन दी 2026 नेशंस चैम्पियनशिप के अंतर्गत. तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को विद दिस धड़कता हुआ ट्रैक फ्रॉम कनिका. स्वागत कर रहे हैं आपका क्योरा.

ऑलराइट, कार्यक्रम में और भी आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें जो कम्युनिटी में हो रही हैं, आपके आसपास क्या कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसकी जानकारी आप हमारे तक पहुंचाएं, हम तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे बाय सेंडिंग अस एन ईमेल ऑन buzz@humfm.com पर। वैसे अगर आपको कैरम खेलना पसंद है, आप एक बहुत ही लाजवाब कैरम बोर्ड प्लेयर है, तो द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट। ये होगा 22nd and 23rd August को ऑन बर्कनहेड स्काउट्स हॉल पर। प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स आर इन्वाइटेड। अगर आप खेलना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर रजिस्ट्रेशन यू कैन विजिट द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन फेसबुक पेज, या फिर आप कॉल करें, मैसेज करें NZCA प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को ऑन 02109085067 पर। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026, ये होगा आने वाले रविवार को 26 जुलाई को एट A1 इवेंट सेंटर 731 ग्रेट साउथ रोड पापाटोटोए में सुबह 10 से 3 बजे के बीच में। दिस इज ब्रिंग ब्रॉट टू यू बाय फिजी गिरमिट फाउंडेशन NZ इन एसोसिएशन विद एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस। और यहाँ पर फ्री स्क्रीनिंग फॉर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, किडनी, ECG आई टेस्ट होगा, इन्फॉर्मेशन ऑन कैंसर स्क्रीनिंग एज वेल, प्रैक्टिकल लर्निंग अबाउट CPR, EpiPen, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेंटल हेल्थ और वेलबींग पर आपको कुछ शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड करियर। यहाँ पर ड्राउनिंग प्रिवेंशन, ऑकलैंड एमरजेंसी मैनेजमेंट, मनुको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आने वाले हैं, उनके कुछ प्रेजेंटर्स आने वाले हैं। एंड यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ऑन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डाइटिशियन एडवाइस, किडनी एंड हार्ट केयर। तो एक भरा पूरा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक्सपो है, जहां पर फ्री फन फॉर द होल फैमिली भी आपके लिए लाया जा रहा है, जिसकी फेस पेंटिंग, किड्स एक्टिविटीज, लाइट रिफ्रेशमेंट्स, हैम्पर्स एंड गिव अवेज के साथ ये हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026 होगा आने वाले रविवार को 26 जुलाई को A1 इवेंट सेंटर 731 ग्रेट साउथ रोड पापाटोटोए में सुबह 10 से 1 बजे के बीच में। इसके अलावा श्री राम मंदिर ये आयोजित कर रहा है अखंड रामायण पाठ ऑन द 1st of August एंड द 2nd of August। शनिवार 1st अगस्त को सुबह 7 बजे रोड पूजा, उसके बाद में आरती, और फिर 8:45 AM के आसपास रामायण पाठ शुरू हो जाएगा। संडे को सुबह 10 बजे रामायण पाठ खत्म होगा, उसके बाद में 10:30 AM के आसपास हवन और आरती होगी। महाप्रसाद विल बी सर्व्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम फॉर 24 आवर्स और मोर देन 24 आवर्स। इसके लिए अगर आप अपनी मंडली को ले जाकर यहाँ पर रामायण पाठ करना चाहते हैं, यू कैन रजिस्टर विद द पंडित, विद द प्रीस्ट ऑन 09836-4647 पर। श्री रामलीला आर डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, इस पर आपके लिए हम डिटेल्ड जानकारी थोड़ी ही देर में लेकर आने वाले हैं। डेट आपको याद होगा, अगर नहीं तो सेव द डेट, 8 अगस्त को ये भव्य रामलीला होने को है एट वैदिक सेंटर। और भी जानकारियाँ थोड़ी देर में आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, जाने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें।

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 ईयर्स।
3: ओकलैंड, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान, सैटरडे 25th जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना। बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz। फॉर स्पॉन्सरशिप कॉल करम हुंडल ऑन 0275146077।
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
5: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Four Square. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
6: Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% off selected Bip brand clothing, footwear and more. There's adults hoodies and sweats from $49, kids hoodies and sweats from $35. End of season sale is on now, only at Rebel Sport. See you on for T's and C's.
7: Give your place a winter glow up for less with Mitre 10. Light the way with 20% off Vectral solar lighting. And save $100 on a 60cm Robin Hood stainless steel dishwasher, now $499. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.

Radio Pub. चौबीस मिनट हो चुके हैं 12 बजकर, मैं हूं जिकाश, रेडियो पब में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। इफ़ यू हैव जस्ट ज्वाइन 104.2 एफएम पर आप तो हमें सुनते ही हैं, 87.7 एफएम पर भी आप अगर ओकलैंड में हैं तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी पर आप हमें सुन सकते हैं। वैसे रोबा इस पर अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक छोटा सा काम करें। अभी आप रोवा का स्नैपशॉट ले, लिसनिंग टू मी राइट नाउ, क्योंकि वहाँ पर मेरा फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो फ़ोटो लेकर आप डालें हमारे फेसबुक कमेंट सेक्शंस में, या फिर हमारे फेसबुक पर जाएं और शेयर योर स्नैप शॉट्स फ्रॉम द रोवा ऐप व्हाइल यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, एंड वी विल give a shout out to everyone who does that। तो 5599 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं। वैसे आपको लगे हाथ, हम याद दिला दें कि आज है 18th of July एंड बहुत ही बढ़िया कॉमेडी नाइट, द ग्रेट कॉमेडी नाइट आज आप विटनेस करने वाले हैं, जहाँ पर टू ऑफ इंडियाज बिगेस्ट टेलीविजन कॉमेडी सुपरस्टार्स ये पहुँच चुके हैं ऑकलैंड। कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर के साथ में होकर आज आप हंसते हंसते लोटपोट होने वाले हैं एट द विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ऑकलैंड में। अगर आपको बुकिंग की ज़रूरत है फॉर टिकट्स, यू कैन गो टू bookmyevent.co.nz पर, एंड आई वॉज लुकिंग एट द बुकिंग पेज राइट नाउ और गिने चुने ही सीट्स बचे हैं। एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी, इफ़ यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन बुकिंग टिकट्स, आप कॉल कर सकते हैं 02104327200 पर और आपको आपके टिकट्स की बुकिंग के लिए हेल्प की जाएगी। विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ऑकलैंड में आज रात हंगामा होने वाला है, नॉन स्टॉप लाफ्टर, हिलेरियस लाइव परफॉर्मेंसेस, इंटरेक्टिव ऑडियंस मोमेंट्स और ये सभी कुछ विद कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर के साथ में।

0: 104.2 FM और रोबक के जरिए आप हमें सुन रहे हैं. नाउ आई एम वर्किंग टू गेट अ पोस्ट अप ऑन फेसबुक और उस पोस्ट के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में अपना फोटोज डालना है लिसनिंग टू अस ऑन रोवा. तो रोवा अगर आपके फ़ोन पर है तो इस पर आप हम को चलाइए और वहाँ पर जाकर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड सेंड इट टू आवर फेसबुक पेज अंडर इन द कमेंट सेक्शन. वैसे खेल कूद बहुत सारे चल रहे हैं. नेशंस चैम्पियनशिप 2026 जारी है एंड क्या आपको पता है कि टॉटनम दे आर ग्रेसिंग आवर शोज और हमारे अपने ही IFC they are hosting the EPL giants right here in New Zealand. From North London to Auckland, witness the Black Knights take on one of English football's most storied clubs. This awesome match is happening on the 26th of July, Sunday ko din mein 3 baje ye khel shuru ho jayega. To aap NZ International Football Festival hospitality brochure इसको आप लुकअप करें एंड टॉटनम हॉटस्पर वर्सेस ऑकलैंड FC टिकट्स आपको मिलने वाले हैं एट प्रीमियर टिकट्स या फिर premier.ticketek.co.nz पर. खेलकूद की बातें चली तो जितने भी खिलाड़ी हैं ये बहुत ही फिट होते हैं मेंटली एंड फिजिकली. आप क्या व्यायाम करते हैं एंड इफ़ यू डू क्या अपने मन को चंगा करने के लिए कुछ कसरत आप करते हैं. वैसे आई केम अक्रॉस दिस ऑसम कहावत जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं राइट नाउ. तो हमेशा तो आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम में आपके साथ में कुछ मोटिवेशनल कोट्स शेयर करते हैं एंड आई केम अक्रॉस दिस वेरी वेरी कूल कहावत कि नीचे झुककर अपने से नीचे वालों के लोगों को ऊपर उठाना ये आपके मन के लिए सबसे बेहतर व्यायाम है. सोचिए इसके बारे में और अपने मन को थोड़ा सा कसरत दीजिएगा हेल्पिंग आउट दोज हु आर इन नीड. आइए शामिल करते हैं योयो हनी सिंह की आवाज़ और चार बोतल वोडका के बारे में कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं.
1: Don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don't be a rooster, don

FIFA World Cup 2026. इसके लिए थर्ड एंड फोर्थ प्लेस प्लेऑफ के लिए खेल होगा बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड टुमारो एट 9 AM. रविवार की सुबह 9 बजे खेल होगा एंड दी फिनाले स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में होने वाला है 20th of July मंडे की सुबह 7 बजे. तो आप कहां पर और किसके साथ ये खेल देखने वाले हैं सुबह सुबह सोमवार को जब 7 बजे काफ़ी लोग काम की ओर जाएंगे, काफ़ी लोग काम शुरू कर चुके होंगे. क्या आपने डे ऑफ ली है या फिर हाफ डे का लीव लिया है टू एंजॉय दी स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना मैच, क्योंकि ये भाई खेल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप ये 4 साल बाद अब आने वाला है. तो हैव यू मेड श्योर कि आप इस गेम को एंजॉय करें, क्योंकि 4 साल बाद क्या होगा किसको पता. तो स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना हैपनिंग ऑन दी 20th of July सुबह 7 बजे सोमवार को. एंड आई थिंक आई माइट बी जस्ट वर्किंग फ्रॉम होम. एनीवे, तो ज़रूर हमें बताएं कि आप किन के साथ ये मैच देखने वाले हैं. वैसे फेसबुक पर हमने एक फ़ोटो डाल दी है, उस फोटो के नीचे आप जाकर अपनी फ़ोटो डालें लिसनिंग टू रोवा, लिसनिंग टू मी राइट नाउ ऑन रोवा. आप अपनी फ़ोटो डालें, देखते हैं कि कितने सारे हमारे लिसनर्स हैं जो अभी थ्रू रोवा हमारे साथ में हुक्ड अप हैं. वैसे आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं ऑन फेसबुक या फिर 5599 पर अपनी मन की बात है आप हमें बता सकते हैं. नेशंस कप 2026, नेशंस चैम्पियनशिप 2026 ये पूरे पैमाने पर जारी है. फिजी एंड इंग्लैंड के बीच में खेल हुआ पिछले रविवार को 12 तारीख जुलाई को. इसमें फिजी की शानदार हार हुई है एट द हैंड्स ऑफ इंग्लैंड 73-8 से. साउथ अफ्रीका ने स्कॉटलैंड को हराया 42-28 से एंड अर्जेंटीना ने वेल्स को पराजित किया 35-21 से. आज न्यूजीलैंड आयरलैंड एट 7:10, जापान फ्रांस 20-9 और ऑस्ट्रेलिया इटली 10:10 ये खेल होगा. कल तड़के सुबह 1:10 AM पर फिजी और स्कॉटलैंड खेलेंगे, उसके बाद में 3:40 AM संडे साउथ अफ्रीका और वेल्स एंड देन अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड प्लेइंग एट 7:10. वैसे अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड प्लेड ऑफ इन द सेमीफाइनल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, इसके बारे में तो आपको मालूम ही है.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
1: Flooring Extra. Adore your floor.
2: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
3: There's truckloads of savings with every single item in store nationwide, half price, at Briscoe's Half Price Sale. So honk for half price off the entire store. Hurry, ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
4: Freedom's flash sale is on now. Get 30% off store-wide. Shop sofas, furniture, outdoor mattresses and homewares and get 30% off. Hurry, sale ends Monday, only at Freedom.
5: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
6: Zabardast hits.
7: Shuru ho jaye to rukte nahi.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Hum.
6: Hum par aapke saath hain Jikash.
8: Yo.
6: Radio Pub.
9: Hey Bula, welcome back to Radio Pub, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. 1:01 हो चुका है. If you have just joined, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं on 104.2 FM and on Rova. कुछ लोगों ने मैसेज किया है, कुछ लोग अभी भी कमेंट्स सेक्शन में अपलोड कर रहे हैं फ़ोटोज़. सिर्फ दो ही लोगों ने अभी तक अपलोड किया है, तो जाए हमारे फेसबुक पेज पर एंड देर इज़ हम 104.2 FM और वहाँ पर मैंने अभी एक पोस्ट डाला है अबाउट दिस शो राइट नाउ और उसके कमेंट सेक्शन में आप जाकर अपने आप को रोवा पर हमें सुनते हुए एक फ़ोटो ले एंड कमेंट सेक्शन में डाले और हमें बताएं कि आप कहां से हमें सुन रहे हैं. इस घंटे पर आपको हम जानकारी देंगे अबाउट द ऑसम द ग्रैंड राम लीला जो होगा 8th of August को. एक नंबर है जो आपको सेव कर लेना है एंड दिस इज़ फॉर मास्टर अशोक जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. इसको बहुत इनकी देखरेख में इसकी तैयारी हो रही है. तो नंबर है, आप इसको सेव करें. देर इज़ मास्टर अशोक जी का नंबर एंड राइट देर इज़ 021-179-5459 021-179-5459 एंड दिस रामलीला द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. कीवी फर्न इमिग्रेशन एडवाइजर्स एंड एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन एसोसिएशन विद

New Zealand Art and Culture Charitable Trust with media partners Hum 104.2 FM. हमारी सभी की इन मेहनत के द्वारा एक रामलीला आपके लिए लेकर हम आने वाले हैं ऑन द 8th ऑफ अगस्त शनिवार को वैदिक सेंटर पर 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटोए में. यहाँ पर स्टॉल्स बहुत सारे लगने वाले हैं एंड इफ़ यू वांट अ स्टॉल फॉर हायर दिस इज एन अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. स्टॉल हायर के लिए आपको कॉल करना है 021-179-5459 पर. और भी जानकारियाँ इसी घंटे पर इस प्रोग्राम के बारे में आपको हम देने वाले हैं.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: There are rising concerns about bird flu क्योंकि ये एक चीज़ है जिसके बारे में पूरी दुनिया सचेत हो रही है and unfortunately अब bird flu has made its way to our shows as well. News में आपने सुना होगा कि एक मृत bird पाया गया हुआ है and it has been tested positive for bird flu. तो how is Auckland getting ready for bird flu? Highly pathogenic avian influenza, HPAI, or bird flu, is a viral disease found in birds across the world. The most worrying strain, H5N1, has now been confirmed in Aotearoa, first detected in a single ocean-going seabird in Wellington. Iska kya matlab hai? Ki even though we are doing our best to keep it at bay, it is likely it will arrive in Auckland via the seabirds. Although it's impossible to predict kab ye aayega, ये आएगा या नहीं, councils and government agencies across New Zealand remain vigilant. Auckland Council is preparing for the possible arrival of H5N1 strain of bird flu and what this could mean for Auckland. Auckland Council का कहना है कि we have been working with government agencies, other councils and EV to plan for the virus and minimize its impact for if it reaches the region. अगर आपको कहीं पर भी कुछ bird मिले जो डेड है, प्लीज डू नॉट टच देम. वी डोंट नो इफ व्हेन द बर्ड फ्लू विल अराइव इन तवाकी मकोरो, बट वी नो एवरीवन हैज अ रोल टू प्ले इन रिड्यूसिंग इट्स इम्पैक्ट व्हेन इट डज. स्ट्रॉन्ग बायोसिक्योरिटी एंड अर्ली डिटेक्शन विल बी आवर स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स फॉर रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ बर्ड फ्लू व्हेन इट अराइव्स इन न्यूजीलैंड. इस पर बहुत ही बढ़िया आर्टिकल छपा हुआ है ऑन द वेबसाइट ourauckland.auckland.gov.nz. प्लीज़ आप वहाँ पर जाए एंड इसको पढ़े. एंड इफ़ यू फाइंड एन अनयूजुअल नंबर ऑफ डेड और सिक बर्ड्स, 3 or more, प्लीज़ कॉल द एग्जॉटिक पेस्ट एंड डिजीज हॉटलाइन. हॉटलाइन का नंबर है 0800-800-9966. दैट इज 0800-800-9966. डू नॉट टच हैंडल द डेड बर्ड्स. For more information, you can go to mpi.govt.nz/hpai.

0: अगर आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है तो जुड़े रहे हमारे साथ में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे हम करने जा रहे हैं आफ्टर दिस एड ब्रेक। पीरियोडिक टेबल क्या है, एलिमेंट्स, इसका सिंबल्स, इट डज रिंग अ बेल, शायद हाई स्कूल में आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो इट्स टाइम टू ब्रश अप ऑन दैट मेमोरी और कुछ सवाल आपसे हम करने जा रहे हैं बस थोड़ी देर में।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: ATs give retro gunning.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने कहा कि आपसे हम सवाल करेंगे, जहां पर आप दुनिया भर के में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इनका केमिकल सिंबल भी आपको मिलने वाला है। तो मान लिया जाए, इफ़ यू टॉक अबाउट हीलियम, इसका केमिकल सिंबल या फिर शॉर्ट फॉर्म है HE। नियोन के बारे में बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म या फिर केमिकल सिंबल NE हो जाता है। लिथियम का है LI, राइट, वेरी सिंपल, हीलियम का HE, नियोन का NE, लिथियम का LI। आपको हमें बताना है कि गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म या फिर केमिकल सिंबल क्या है। 5599 पर अपना जवाब भेजें। अगर हीलियम का HE है, नियोन का NE है, लिथियम का LI है, तो गोल्ड का केमिकल सिंबल या फिर शॉर्ट फॉर्म ऑन द पीरियोडिक टेबल क्या है। 5599 पर अपना जवाब हमारे पास भेजें। देखें कि आपको अभी तक अपना पीरियोडिक टेबल याद है या फिर आपका रिसर्च कितना पक्का है, ये आप हमें बताएं। गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म या फिर पीरियोडिक टेबल पर सिंबल क्या है, 5599 पर अपने नाम के साथ अपना जवाब दें।

It's 25 after 1 और मैं हूं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं on Radio Pub. सवाल हमने किया है about the periodic table and periodic table पर दुनिया भर में पाए जाए जाने वाले जितने भी elements हैं उसके बारे में जानकारी आपको मिलती है and इसके जितने भी elements हैं उनके symbols और the placement in the periodic table ये सब आपको जानकारी मिलती है चाहे वो alkali metals हो metalloids हो या फिर alkaline earth metals हो transition metals हो noble gases हो ये सभी चीजें आपको periodic table में जानकारी इनके बारे में आपको मिलने वाली है and I have asked कि अगर helium का scientific symbol या फिर periodic table पर symbol है He neon का है Ne और lithium का है Li तो गोल्ड का सिंबल क्या है गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या है 5599 पर आप हमें जवाब दें एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे बीच में हमारे लिसनर्स बहुत ही लर्नड है बहुत ही स्मार्ट है जानकी थैंक यू सो मच आपने सही जवाब दिया है दिव्या है एश फ्रॉम वेलिंगटन हमेशा आप हमारा साथ देते हैं थैंक यू सो मच एंड फारा आपका भी जवाब आ चुका है फोरम है फ्रॉम क्राइस्टचर्च आपको भी हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में टुगेदर विद ऑल योर रिलेटिव्स इन क्राइस्टचर्च एंड इन ऑकलैंड आप सभी को हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं नॉट फॉरगेटिंग अंतरप्रीत हैप्पी हैप्पी बर्थडे Many, many happy returns of the day. आपको हम wish कर रहे हैं from the entire team of हम. आशा करते हैं कि आपका दिन आज अभी तक बहुत ही बढ़िया गया है and आपकी शाम और रात और भी बढ़िया होने वाली है. May you receive all the love, all the gifts that you deserve on this special day of yours. हमारी ओर से बस यही कामनाएं हैं कि खुशियां आपके कदम चूमे अपने और अपनों का प्यार आपको मिलता रहे और कामयाबी आपका पता ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाए बहुत ही जल्द आपको हमारी ओर से हैप्पी हैप्पी बर्थडे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे 5599 पर अपने नाम के साथ अपना जवाब भेजिए कि गोल्ड का पीरियोडिक टेबल पर सिंबल क्या है ये आपसे हम जानना चाहते हैं

0: Playing Bollywood's biggest hits. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbi, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha hai.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
3: Swati kha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk street food aur raaton ki rahin duniya bhi.
4: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
5: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe, only on Hum.
7: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
8: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
9: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
8: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
9: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
8: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
10: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high quality standalone and terraced houses. We're one of the award winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
12: Indelible Homes, your building expert.
13: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
14: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
15: No way.
16: We in trouble?
14: Nah, it's BP Plus.
16: What is that?
14: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
17: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
18: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
19: Hitting the open road these school holidays? Refuel at Zed with Afterpay. Shop snacks, fuel and more, and pay in four. Shop now with Afterpay at Zed. Fees, TCs and eligibility criteria apply.
20: The beat of Bollywood.
21: World's best, hamari koi branch nahi hai.
22: Yo.
20: Radio Pub.
23: वेलकम बैक टू हम, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ ऑन रेडियो पब। नाउ द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान, इनके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं एंड यू ऑल्सो नो कि ट्रस्ट एरेना पर 25th of July को आने वाले शनिवार को बहुत ही बड़ा तहलका मचने वाला है, क्योंकि ही इज़ कमिंग बैक विथ वन ऑफ हिज अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक एक्सपीरियंस इज मैजिक, जहाँ पर अपने टाइमलेस हिट्स, सोल स्टरिंग कव्वाली और अपनी पावरफुल वॉइस के साथ ये परफॉर्म करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन आप तक लाया जा रहा है बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड सिमरन प्रोडक्शंस विद शहजादा प्रोडक्शन, एंड टिकट्स बहुत ही ज़ोरों से बिक रहे हैं एंड मार्क माई वर्ड्स, आप ये लिख कर रख ले कि अगले शुक्रवार तक या फिर उससे पहले टिकट्स विल बी सोल्ड आउट dryTickets.com, क्योंकि अभी हम अपडेट्स देख रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा सीट्स हैव बीन मेड अवेलेबल. टिकट्स बहुत ही कम बचे हैं, सीट्स बहुत ही कम बचे हैं, सम एक्स्ट्रा सीट्स वेयर एडेड. इट्स योर चांस टू गेट योर टिकट्स राइट नाउ. dryTickets.com पर जाए एंड यू गोट to book yourself a ticket, a seat to experience the magic of Rahat Fateh Ali Khan, who will be here on the 25th of July at the Trust Arena in Auckland.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स

हे वेलकम बैक टू हम रेडियो पर मैं जी काश आपका साथ दे रहा हूँ। 2:02 हो चुके हैं। इस घंटे पर आपको तमाम जानकारियाँ देंगे। अगर आपको करण औजला को देखना है या फिर राज गढ़वी के साथ में गरबा सेलिब्रेट करना है तो ये सारी जानकारियाँ इसी घंटे पर आपको हम प्रदान करते रहेंगे। प्लस हमारे पॉडकास्ट में आजकल क्या कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेटेस्ट एपिसोड्स क्या कुछ आए हुए हैं, ये भी जानकारी इसी घंटे पर हम आपको प्रदान करते रहेंगे। फिलहाल मैं हूं जी काश, रेडियो पब में आपका स्वागत हम कर रहे हैं। क्योरा

0: The beat of Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: ऑलराइट, द ग्लोबल सेंसेशन करण औजला ये अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं ऑकलैंड एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सर्ट्स ऑफ द ईयर विदाउट डाउट. 25 अगस्त को स्पार्क अरेना में ये कॉन्सर्ट होने वाला है और इक्की, इनको अगर आप जानते हैं तो इनके साथ में इक्की आ रहे हैं करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर 25 अगस्त स्पार्क अरेना में. और इसके लिए टिकट्स बहुत ही ज़ोरों शोरों से बिक रहे हैं. livenation.co.nz पर आप जाएं और ये टिकटिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वहाँ पर. आपके लिए अभी हम मौका दे रहे हैं टू गेट इन द ड्रॉ टू विन डबल पासेस. बस आपको इतना ही करना है, कह यही लिखे और अपना फेवरेट करण औजला सॉन्ग ये हमें बताए क्या है. कह यही स्पेस आपका फेवरेट करण औजला सॉन्ग क्या है. देखते हैं सबसे ज़्यादा इनके किस सॉन्ग को लोग पसंद करते हैं. तो आपका फेवरेट करण औजला सॉन्ग व्हाट इज़ इट, ये आपको हमें बताना है. के आई स्पेस सॉन्ग का नाम स्पेस अपना नाम लिखे एंड सेंड इट टू 5599. राइट, के आई स्पेस अपना फेवरेट करण औजला सॉन्ग एंड सेंड इट टू 5599 विथ योर नेम एंड आपके नाम को हम ड्रॉ में शामिल करना चाहते हैं.
3: One, two, three, four.

0: चिकाश।
1: बहुत सारे करण अर्जुला के फैंस हमारे बीच में हैं, तो लेट्स डू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा करते हैं, अभी से लेकर 3 बजे के बीच में कहीं पर अचानक से हम एक करण अर्जुला का गाना आपके लिए प्ले करेंगे। कीप लिसनिंग एंड व्हेन यू हियर द सॉन्ग, आपको टेक्स्ट करना है KI और जो गाना बज रहा है उस गाना का नाम, एंड यू कैन सेंड इट टू 5599 टू गेट इन टू द ड्रॉ टू विन सम पासेस। ऑलराइट, तो गौर से सुनते रहें, अभी से लेकर 3 बजे के बीच में कभी भी हम करण अर्जुला का गाना विदाउट अनाउंसिंग कि हम गाना बजाने जा रहे हैं, आई प्ले द सॉन्ग एंड जब तक गाना बज रहा है, एज सून एज यू हियर इट, राइट KI स्पेस सॉन्ग का नाम एंड अपने नाम के साथ आप हमारे पास मैसेज करें ऑन 5599। ऑलराइट, तो गौर से सुनते रहे, ये गाना हम करण अर्जुला का गाना हम कभी भी बजाएंगे बिटवीन नाउ एंड 3 PM।
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: Imagine having someone promoting your business around the clock without wages or weekends off. That's what Quality Signage does. At Speedy Signs, they design and install signage that turns heads, builds confidence, and helps customers choose you faster. If your current sign is blending into the background, maybe it's time for an upgrade. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
7: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte, tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
6: Saturday 18th July 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
7: Mashallah, bahut acha, very nice.
8: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Happy Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.

0: Yo.
1: Radio Pop.
2: इक्कीस मिनट हो चुके हैं 2:00 एंड इट्स अ बिट ऑफ अ सेंसिटिव टॉपिक LGBTQ+ राइट्स रेसिज्म एंड द रिप्रेजेंटेशन एंड द सर्च फॉर इक्वालिटी नाउ दिस वन थिंग बीइंग वोक एंड दिस वन थिंग बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल तो अनफिल्टर्ड में ब्रेकिंग बैरियर्स शनील लाल वॉज आवर गेस्ट एंड ही हैज स्पोकन on LGBTQ rights, racism, representation, and the search for equality. Shanil Lal joins the Unfiltered team for a powerful conversation about LGBTQ rights, therapy, identity, racism, representation, and the ongoing fight for equality. From their advocacy journey and the campaign to ban conversion therapy in New Zealand to workplace discrimination, political debates and the myths surrounding the LGBTQ+ community. Is par Shanil ji ne answer kiya hai some hard hitting and some very difficult questions and unhone apni journey share ki hai on creating a more inclusive society. तो ये एक बहुत ही honest, बहुत ही eye opening conversation है जिसे अभी आप सुन सकते हैं in the unfiltered drive. Drive लिखकर भेजे आप भेजे 5599 पर full audio link आपको मिलने वाला है. Well, Shanil Lal uses they them as their pronouns and has described themselves as trans, non-binary, Vakasa Lewa Lewa and Hijra, and is a prominent Aotearoa New Zealand journalist as well. So, see the full catch up on Unfiltered through texting Drive to 5599.

0: कॉम पर आपके साथ हैं जिकाश।
1: ऑकलैंड में रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि हर साल ऑकलैंड काउंसिल द्वारा इनऑर्गेनिक कलेक्शन किया जाता है। वो सारी चीज़ें जो आपके घर में स्पेस ले रही है, जिसको आप फेंकना चाहते हैं लेकिन ज़रिया नहीं है कि आप कैसे और कहां ले जाकर फेंके, तो इन सारी चीज़ों को, इनऑर्गेनिक चीज़ों को आप इकट्ठा करके अपने लिए इनऑर्गेनिक कलेक्शंस के लिए बुकिंग कर सकते हैं ऑन दी ऑकलैंड काउंसिल .gov.nz एंड दी बुकिंग इज़ एक्टिव नाउ। ऑनलाइन आपको बुकिंग करना है, अपना एड्रेस डालना है एंड देन आपके इलाके में आपके घर से कब ये कूड़ा करकट बटोरा जाएगा आपको थ्रू ईमेल बताया जाएगा। आई हैव डन माइन एंड आई गॉट अ डेट जब मेरे घर से इनऑर्गेनिक रबिश का कलेक्शन होगा। तो आप भी ऐसा कीजिए, aucklandcouncil.gov.nz पर जाए, वहाँ पर यू कैन बुक योर इनऑर्गेनिक कलेक्शन। हम ऐसा करेंगे कि ये लिंक हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर भी हम डालेंगे ऑन हम के पेज पर एंड फ्रॉम देयर यू कैन ईजली एक्सेस द बुकिंग लिंक। हमने कहा है आपको कि इस घंटे पर कभी भी आपके लिए हम एक करण औजला का गाना बजाएंगे, आपको जैसे वो गाना सुनाई दे, जैसे आप उस गाने को आप सुने, आप हमारे पास मैसेज करें 15599। मैसेज करने का तरीका क्या है, KI लिखना होगा, जो गाना बज रहा है उस गाने का नाम और फिर अपना नाम लिख कर भेजिए 5599 पर। तो अभी से 3 बज के बीच में कभी भी एक करण औजला का गाना हम बजाएंगे एंड बाय डूइंग सो, बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस एंड सेंडिंग योर मैसेज, यू विल बी इन द ड्रॉ टू बिकम द लकी विनर फॉर अ पास, अ डबल पास फॉर करण औजला'स पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर August 25 को स्पार्क अरेना में जो होने वाला है। वैसे अगर आप टिकट्स लेना चाहते हैं livenation.co.nz पर जाए, आपको डिटेल्स वहां पर मिलने वाली है।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Danny didn't think he needed a DVS system.
2: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
1: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
2: Nah, only one room. It was just too noisy.
1: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
4: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
5: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
6: From Christopher Nolan.
7: No one could stand between me and home.
6: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, with Zendaya and Charlize Theron. The Odyssey, in cinemas now. Rated M.
8: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
9: Kabhi bhi, kahin bhi.
10: Yo.
11: Big Radio Pop.
12: रेडियो पब का मज़ा आप ले रहे हैं और 21 मिनट बाकी रह चुके हैं 3 बजने में। मैं हूं जिकाश, आपका साथ देता यूं ही चलता रहूंगा राइट टिल 6 PM। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है इन ऑर्गेनिक कलेक्शन का लिंक, तो गो देयर एंड चेक इट आउट और अपने लिए अपनी बुकिंग्स आप कर सकते हैं विद द ऑकलैंड काउंसिल, ताकि बिना ज़्यादा मेहनत किए आपके घर के अंदर जो अनवांटेड इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो आपने गेट रिड करने की कोशिश की है लेकिन नहीं कर पाए हैं, ये आपके आंगन में से ही ऑकलैंड काउंसिल के कलेक्शन टीम द्वारा लेकर जाया जाएगा। तो भाई आप इतना सारा राइट्स पे करते हैं, सर्विसेज का भी आप इस्तेमाल कीजिए। गो ऑन टू आवर फेसबुक पेज और वहाँ पर हमने लिंक डाला है, गो एंड चेक इट आउट।

0: Yo.
1: Big Radio Pub. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
2: नेशनल रग्बी लीग जहां पर वॉरियर्स दे हैव ट्रिकल डाउन टू नंबर 3 थर्ड स्पॉट पर आ चुके हैं लेकिन दे हैव गॉट अ मैच ऑन हैंड टुनाइट आज 7:35 PM पर ड्रैगन्स से ये खेलने वाले हैं तो शायद दे विल क्लाइम बैक अप टू द सेकंड पोजीशन वैसे लीड कर रहे हैं पैंथर्स उसके पीछे है रूस्टर्स एंड दिस ईयर वॉरियर्स आर डूइंग वे वे बेटर देन लास्ट ईयर तो और कुछ मैचेस विद NRL वीक 20 है ये ऑफ वीक 27 यानी कि देर आर 7 मोर वीक्स ऑफ रग्बी टू बी प्लेड इन NRL बिफोर वी हेड इन टू द क्वालिफायर्स एंड द नॉकआउट स्टेजेस तो पैंथर्स ब्रोंकोस के बीच में खेल हुआ ऑन थर्सडे ब्रोंकोस की जीत हुई 14-12 से शार्क्स ने नाइट्स को कल हराया 20-18 से एंड रूस्टर्स ने स्टॉर्म को 14-6 से हराया है आज शाम 5 पर रेडर्स और रैबिटर्स खेलने वाले हैं उसके बाद 7:35 PM पर वॉरियर्स और ड्रैगन्स बुलडॉग्स और वेस्ट टाइगर्स विल बी प्लेइंग द लास्ट मैच फॉर टुनाइट इन NRL एट 9:35 PM टाइटन्स और ईगल्स कल शाम 4 पर खेलेंगे एंड देन द लास्ट मैच फॉर दिस वीक इज बिटवीन डॉल्फिन्स एंड काउबॉयज हैपनिंग एट 6:05 PM

0: Farmers, buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
1: Bollywood ka asli blockbuster.
2: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Yo.
1: Big Radio Pub.
3: तीन बजने का है रेडियो पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। नेशंस चैंपियनशिप 2026 ये फिलहाल जारी है बिटवीन अ लॉट ऑफ कंट्रीज और आज भी तीन खेल होने को हैं जिसके बारे में जानकारी आपको हमने दी है। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि द फर्स्ट मैच दैट वाज प्लेड जब ऑल ब्लैक्स टीम फॉर्म हुई दिस ईयर वी प्लेड अगेंस्ट फ्रांस और जब फर्स्ट मैच हुआ इसमें ऑल ब्लैक्स की जीत हुई एंड एक ट्रॉफी ऑल ब्लैक्स को प्रेजेंट किया गया एंड दैट ट्रॉफी वाज द डेव गैलागर ट्रॉफी। न्यूजीलैंड एंड फ्रांस दे कॉन्टेस्ट द डेव गैलागर ट्रॉफी इन रेगुलर इंटरनेशनल रग्बी यूनियन टेस्ट मैचेस। ये ट्रॉफी को एस्टेब्लिश किया गया था इन 2000 एंड इज नेम्ड आफ्टर डेव गैलागर हु इज़ द लेजेंडरी कैप्टन ऑफ द 1905 ओरिजिनल्स ऑल ब्लैक्स who was born in Ramelton, Ireland, but played his provincial rugby in Auckland before passing away in France during World War I. So, when these two nations meet, France or All Blacks, on neutral ground at the Rugby World Cup, they are simply competing for the Webb Ellis Cup, which is the World Cup. But when they meet in test match, they compete for the Dave Gallagher Trophy. So, aise hi. ब्लेडिस्लो कप के लिए ऑल ब्लैक्स एक और एक टीम के साथ में खेलती है या फिर अगेंस्ट खेलती है। आप हमें ये बताएं कि विच टीम डज द ऑल ब्लैक्स प्ले अगेंस्ट फॉर द ब्लेडिस्लो कप। 5599 पर ये जवाब आपको हमारे पास भेजना है। व्हाट टीम और विच टीम डज द ऑल ब्लैक्स प्ले अगेंस्ट फॉर द ब्लेडिस्लो कप। और इस साल का ब्लेडिस्लो कप इसके मैचेस होने वाले हैं इन अक्टूबर। तो बताएं कि किस टीम के अगेंस्ट खेलती है ऑल ब्लैक्स फॉर द ब्लेडिस्लो कप।

हम पर रेडियो पब का मजा आप ले रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर एंजॉयिंग सम ग्रेट मूवीज इन द थिएटर्स. वेलकम टू द जंगल के बाद में आपने अल्फा देखी है, देखी है नहीं देखी है, उसके बाद में अब लोग एंजॉय कर रहे हैं धमाल 4. एंड अभी तक मैंने आई हैवन वॉच्ड नीदा नो हैव वॉच्ड वेलकम टू द जंगल. अल्फा मैं देखना चाहता था लेकिन समय नहीं मिला, लेकिन धमाल 4 के लिए आई हैव टू टेक टाइम आउट. लेकिन कुछ रिव्यूज़ आए हैं, आई थिंक दीज आर पीपल जो डैमेज करना चाहते हैं मूवीज़ को और चाहते हैं कि लोग इस मूवी को ना देखें. वेलकम टू द जंगल को एवरेज यूज़र रेटिंग 4 stars मिले थे आउट ऑफ 5 और क्रिटिक्स रेटिंग इसको 3 stars मिली है टिल नाउ. अल्फा को 2 stars मिला है अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स और एवरेज यूज़र रेटिंग इसको 3 stars मिले हैं आउट ऑफ 5 stars. 3 जुलाई को ये मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 8 रोज़ पहले रिलीज़ हुई धमाल 4. दैट्स द 4th installment इन द धमाल सीरीज़ जहाँ पर अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जैफरी को आपने देखा है. क्या आपने इस मूवी को उतना इन्जॉय किया है? क्रिटिक्स का माने अगर हम देखें इनके बारे में, इनके द्वारा रेटिंग को, तो शायद खास नहीं चली ये मूवी. इसके आमदनी पर हम कुछ गौर करेंगे थोड़ी देर में और आपको बताएंगे कि कितने ज़्यादा पैसे अभी तक इस फिल्म ने कमाया है इन दी लास्ट 8 days.

0: Hollywood's biggest hits.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा हुनुआ west में?
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
6: मुझे भी।
5: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
0: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
1: Yo, Radio Pub। हम पर आपके साथ हैं जिकाश।
10: It's 25 minutes to 4. कार्यक्रम में अभी आगे बढ़ते हैं। सवाल हमने आपसे किया है कि ऑल ब्लैक्स किस टीम से खेलती है फॉर दी ब्लडी स्लो कप। दो मैचेस होते हैं होम एंड अवे बेसिस पर, तो वो कौन सी टीम है जिनके अगेंस्ट हमारी ऑल ब्लैक्स खेलती है टू विन दी ब्लडी स्लो कप। वैसे सबसे ज़्यादा बार ब्लडी स्लो कप न्यूजीलैंड ने ही अपने नाम किया है ऑल ब्लैक्स ने। किस टीम के अगेंस्ट ये कप खेला जाता है ये आप हमें बताएं 5599 पर। बड़ी हलचल मची हुई है इन हॉलीवुड विद द मूवी द ओडिसी। ट्रेविस स्कॉट, मैट डेमन, रॉबर्ट पैटिनसन, टॉम हॉलैंड इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। इसके साथ एना हैदवे और जेंडाया भी इस मूवी में इनको आप देख सकते हैं। तो द ओडिसी, बहुत ज़्यादा मेहनत इस मूवी में गई है और इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। लेकिन इस मूवी को देखने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ओडिसी इट्स बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथोलॉजी एंड ट्रोजन वो। ट्रोजन वो क्या है? द ट्रोजन वो वॉज ए लेजेंडरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रीक्स एंड द सिटी ऑफ ट्रोय इन वेस्टर्न Anatolia, which is the modern-day Hellenic Turkey, famously immortalized in Homer's epic poem. According to the ancient Greek tradition and mythology, the 10-year siege was sparked by Paris, the Trojan prince, who abducted Helen, the wife of Spartan king Menelaus. To retrieve her, Menelaus rallied his brother Agamemnon, the king of Mycenae, who led a massive allied Greek expedition across Aegean. तो इस वो के बाद में क्या कुछ हुआ था उस पर ये फिल्म की कहानी आधारित है। और after the Trojan War, Odysseus faces a dangerous voyage back to Ithaca, meeting creatures like the Cyclops, the Polyphemus, Sirens and Calypso along the way। और इसके बारे में कई सारे इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे एंड इनके एक्टर्स द्वारा पूछा गया कि सबसे फन फील्ड डे सेट पर क्या था एंड नो बॉडी कुड आंसर, क्योंकि उनका मानना है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहां पर इनका पसीना नहीं छूटा है और कड़ी मेहनत इन्होंने नहीं की है। तो एन ऑसम मूवी इन द थिएटर्स राइट नाउ द ओडिसी, इसे आप ज़रूर चेकआउट करें। बट बिफोर दैट, go and read about the Trojan War.

0: Yo.
1: Big Radio Pop.
2: Yeah. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: डिब्बा खुल गया
3: भरत भाई टिफिन खुल गए छे संजना का डिब्बा खुल गया
4: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
3: डिब्बा खुल गया
4: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
5: Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% on selected Bip brand clothing, footwear and more. There's adults hoodies and sweats from $49, kids hoodies and sweats from $35. End of season sale is on now, only at Rebel Sport. See your night for T's and C's.
6: Give your place a winter glow up for less with Mitre 10. Light the way with 20% off Vectral solar lighting. And save $100 on a 60cm Robin Hood stainless steel dishwasher, now $499. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
7: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
8: Join the Tribe!
7: The Tribe app brings you live scores, real-time updates,

Radio Pub. हम पर आपके साथ हैं चिकाश।

वेलकम बैक टू हम, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। रेडियो पब का मजा आप ले रहे हैं। इफ यू हैव जस्ट जॉइंड, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं ऑन 104.2 एफएम एंड ऑन रोवा। रोवा पर हमें आप सुन रहे हैं, लेट मी नो एंड शो मी कि आप हमें सुन रहे हैं ऑन रोवा। कहाँ पर है आप, बस आपको इतना ही करना है, चाहे आप फ़ोन पर सुन रहे हैं या लैपटॉप पर सुन रहे हैं, टेक अ फोटो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट राइट नाउ एंड हमारे फेसबुक पेज पर आप जाए और वहाँ पर मैंने एक पोस्ट डाला है, उस पोस्ट के नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपना स्क्रीनशॉट डालें एंड लेट मी नो कि आप कहाँ पर है, जानकर बहुत ही अच्छा लगा। वैसे हमने कहा कि 10th स्कूल ये शुरू हो जाएगा फ्रॉम मंडे, तो कई सारे जगहों पर 10th के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स भी शुरू हो जाएंगे एंड वन सच प्लेस इज लिंक ट्री फॉर पीपल हु आर ओर हु वांट टू गेट इनटू आर्ट्स। डिस्कवर क्रिएटिविटी दिस टर्म एट मैरांगी आर्ट्स सेंटर। यहाँ पर एक्साइटिंग आर्ट प्रोग्राम है जो ऑफर करता है समथिंग फॉर एवरीवन एज्ड 5 एंड अप विद क्लासेस डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रन, टीनेजर्स एंड अडल्ट्स ऑफ ऑल स्किल लेवल। तो इनके आर्ट्स क्लासेस में इंक्लूडेड है क्ले एंड सेरामिक्स, पेंटिंग, ड्राइंग, मिक्स्ड मीडिया एंड क्राफ्ट। यू कैन हेड टू लिंक tr.ee मैरांगी आर्ट्स, दैट इज़ द वेबसाइट। सो linktr.ee पर आप इसको लुकअप करें, https://linktr.ee मैरांगी आर्ट्स एंड यू विल एंड अप ऑन देयर पेज। इनका 10th प्रोग्राम इज पैक्ड विद अपॉर्चुनिटीज टू गेट हैंड्स ऑन एंड ट्राई समथिंग न्यू एंड ब्रिंग योर क्रिएटिव आइडियाज़ टू लाइफ। और भी जानकारियाँ अबाउट थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, जहाँ पर आप जाकर भाग ले सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते चले।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: पिछले घंटे में हमने सवाल किया था अबाउट ब्लडी स्लो कप एंड यप काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है. ऑल ब्लैक्स प्लेज अगेंस्ट दी वॉलबीज. ऑस्ट्रेलियन टीम से भिड़ंत होती है हमारी फॉर दी ब्लडी स्लो कप और इस साल भी दो बार हेड टू हेड दोनों टीम्स होने वाली है फॉर दी ब्लडी स्लो कप. टेस्ट वन इज़ ऑन दी 10th of October ईडन पार्क पे होगा जहाँ पर ऑकलैंड में ऑल ब्लैक्स और वॉलबीज आम सामना करेंगे. किक ऑफ एट 7:10 PM ऑन 10th of October. फिर सेकंड मैच फॉर द ब्लडी स्लो कप 17 अक्टूबर को होगा एट द अको स्टेडियम इन सिडनी.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि इलेक्शंस इसी साल होने वाले हैं. दी जनरल इलेक्शंस फॉर न्यूजीलैंड इज हैपनिंग ऑन दी 7th of November इज डी डे फॉर इलेक्शन. तो इसके लिए कुछ की डेट्स है जानने के लिए यू हमारे साथ में जुड़े रहे. इस गीत के बाद में कुछ संदेशों के बाद में आपके साथ में 2026 जनरल इलेक्शन की डेट्स हम शेयर करने वाले हैं. हैव यू एनरोल्ड योरसेल्फ टू वोट? हैव यू रिसेंटली बिकम एन NZ रेसिडेंट? क्या अभी भी आपको सिटीजनशिप मिली है? हैव यू चेंज्ड वे यू लिव? तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू रजिस्टर या फिर री रजिस्टर योर सेल्फ टू वोट इन द राइट एरियाज ऑफ द कंट्री.

प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में ही लव उसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पिए से है रखे जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैक कान टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, वही की टिप्पणी पे ना करूं टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी कैसी तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उसकी फाड़ता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

घूमने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी
3: रुजबी टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
6: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
7: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे ओनली ऑन हम
8: There's truckloads of savings with every single item in store nationwide, half price, at Briscoe's Half Price Sale. So honk for half price off the entire store. Hurry, ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
9: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
10: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Tūtaki. All together Auckland.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
11: पूरे शहर पे कब्जा होगा राज होगा
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स रेडियो हम पर आपके साथ हैं जिकाश
12: ठीक 5 बज रहे हैं एंड मैं जिकाश आपके साथ देने वाला हूँ फॉर अनदर आवर टिल 6 PM एंड 6 PM पर रेडियो पब

इस कंट्री को सही लोगों को इलेक्ट किया जाएगा टू रन द शो। क्या आप खुश है करंट गवर्नमेंट से? अगर नहीं खुश है, वेल यू कैन वोट अगेंस्ट देम। अगर खुश है तो वोट फॉर देम। या फिर आप चाहते हैं कोई नई पार्टी को मौका दिया जाए जिनके पोर्टफोलियो से आप बहुत ही खुश हुए हैं एंड यू अग्री विथ देयर मैंडेट्स, तो भाई उनके लिए आप वोट करें, उनको आप जिता सकते हैं। लेकिन इस सभी के लिए आपको वोट करना ज़रूरी है। आप हो, आपके घर में जितने भी लोग हैं वोटिंग के लिए एलिजिबल है, उनको वोट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वोट नहीं करते हैं तो फिर 3 सालों तक आपको कंप्लेन करने का भी हक नहीं है, क्योंकि जो हक है आपका वोट करने का, इसको आपको एक्सरसाइज करना है। तो थोड़ी देर में सम जनरल इलेक्शन की डेट्स आपके साथ में हम शेयर करेंगे, कुछ की इन्फॉर्मेशन है आपके साथ में हम शेयर करेंगे ड्यूरिंग दिस आवर राइट हियर ऑन 104.2 एफएम एंड थ्रू रोवा। जमे रहे हमारे साथ में, मैं हूं जिकाश, आपका स्वागत हम कर रहे हैं द फाइनल आवर ऑफ रेडियो पब क्योरा।

पर आपको जाना है premier.ticketek.co.nz पर जाकर आप ये टिकट्स ले सकते हैं फॉर दिस awesome मैच हैपनिंग ऑन दी 26th ऑफ जुलाई दैट इज़ नेक्स्ट वीकेंड संडे।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūruki. All together, Auckland.
2: हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट।
3: Thinking about renovating before spring? Beat the tradie rush with Elite Bathroomwear's Midwinter Reno Week starting Monday.
4: Save store-wide across all brands, plus score clearance deals of up to 60% off mirrors, ceiling fans, basins and accessories.
3: Visit New Zealand's largest bathroom showroom at 59 Allens Road, East Tāmaki. Open Saturday and Sunday, 9 till 4.
4: Starts this Monday for 1 week only. Find out more at elitebathroomwear.co.nz.
3: Elite Bathroomwear, a reflection of you.
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
6: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vogue 442-litre side-by-side fridge freezers, $699. Midea heat pump dryers, $499. Comfy 12-place dishwashers, $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: Please use your imagination for the following ad.
8: If I won Powerball, I'd do some spending. Yep, I'd spend some time with... And we'd enjoy a whole lot of...
7: Imagine winning $30 million this Saturday. Play in store or online.
9: Hum par aapke saath hain Jikash.
10: Yo.
9: Big Radio Pub.
11: Well, just like you have heard, 30 million is up for grabs in Lotto and Powerball tonight. Kya aapne apne tickets le liye hai? If yes, well, all the best. Nahi, to bhai bhag kar jaye supermarket ya phir My Lotto app par aap apne tickets le sakte hain. I have to get my number straight. And agar kal main kaam par nahi hai, to aap ishara samajh jayega. Anyways. जनरल इलेक्शन 2026 ये इसी साल है एंड कुछ की डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। 7th सितंबर को कैंडिडेट नॉमिनेशंस ओपन होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप इस साल कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, वेल यू गॉट फ्रॉम नाउ टिल 7th सितंबर टू गेट योर डक्स इन अ रो फॉर योर नॉमिनेशंस। कैंडिडेट नॉमिनेशंस ओपन होंगे। 1st अक्टूबर को डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट होगा एंड 4th October ko the Governor General issues formal direction to the Electoral Commission to hold the election. 8th October ki raat 12 baje nominations close honge for candidates. To 7 September se 8 October ke beech mein candidates ko enroll kiya ja sakta hai aur 21st October ko overseas voting shuru hoga. People outside NZ can start voting for the NZ general elections. 25th October लास्ट डे टू एनरोल टू वोट इन द इलेक्शन। भाई ये ना सोचे कि भाई 25th अक्टूबर तक टाइम है, नहीं, टाइम भागता चला जाएगा, आप भूल जाएंगे एंड कम 25th अक्टूबर आप सिर खुज जाएंगे कि यार मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। तो जाइए, फाइंड आउट इफ यू कैन वोट, एंड इफ यू कैन वोट गेट एनरोल्ड टू वोट। एडवांस वोटिंग शुरू हो जाएगा 26th अक्टूबर को, रेगुलेटेड पीरियड खत्म होगा 6 नवंबर को, ऑल इलेक्शन एडवर्टाइजिंग मस्ट एंड ऑन द 6th नवंबर एंड देन 7th ऑफ नवंबर इज द इलेक्शन डे। वोटिंग प्लेसेस खुलेंगे फ्रॉम 9 AM टिल 7 PM। इलेक्शन डे इज द 7th ऑफ नवंबर फ्रॉम 9 AM टिल 7 PM। इलेक्शन नाइट को प्रीलिमिनरी इलेक्शन रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे एंड देन 27 नवंबर को ऑफिशियल रिजल्ट्स फॉर द 2026 जनरल इलेक्शन डिक्लेयर किया जाएगा एंड 27 नवंबर को या फिर 28 नवंबर को आपको पता लग जाएगा कि हु विल बी इन गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 years।
10: तू बेच दा गोलियां, तू बेच दा गोलियां, तू बेच दा सच और गल करिए कृष्ण, तू गोलियां बेच।

Alright, let's fill you again on the matches that are happening tonight. Aaj Eden Park par in the Nations Championship 2026 ke tahat, New Zealand and Ireland are facing off each other at 7:10 PM. Uske baad mein at 20:09, yani ki 8:40 PM par Japan aur France khelne wale hain in Tokyo. Australia aur Italy are playing at 10:10. That is happening in Perth. उसके बाद अगर आप लेट नाइट करने वाले हैं कल सुबह 10:01 पर फिजी और स्कॉटलैंड आमना सामना करने वाले हैं. फिजी कमिंग आउट ऑफ ए वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग लॉस एट द हैंड्स ऑफ इंग्लैंड लास्ट वीक 73-8 से इनकी हार हुई. और इसके बाद क्या स्कॉटलैंड पर अपना गुस्सा उतारेगी या फिर स्कॉटलैंड भी कल सुबह फिजी को धोने वाली है. South Africa or Wales, they are playing at 3:40 AM tomorrow morning. This is happening in Durban. Aur phir kal subah Argentina aur England khelne wale hain in the Nations Championship 2026 ke tahat. To is par updates hum aap tak pahunchayenge through our social media and also in our news items as well. Aap hame follow karte rahiyega. Iske alawa NRL के भी मैचेस होने वाले हैं. आपके पास एक टफ चॉइस है. आर यू गोना वॉच वॉरियर्स एंड ड्रैगन्स टू नाइट और आर यू गोना वॉच ऑल ब्लैक्स एंड आयरलैंड. ऑल ब्लैक्स आयरलैंड आयरलैंड 7:10, वॉरियर्स ड्रैगन्स 7:35 PM पर होने वाला है. बुलडॉग्स और वेस्ट टाइगर्स 9:35 PM पर ये गेम होगा. वैसे अभी जो खेल हो रहा है बिटवीन रेडर्स एंड रैबिटोज, रेडर्स हैव इट वेल अंडरवे. Raiders 22, Rabbitohs 6.

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: मुझे हिट गाने।
3: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: dear.
1: Streaming on Rover.
2: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
3: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
2: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
3: Mashallah, bahut acha, very nice.
4: There's truckloads of savings with every single item in store nationwide, half price, at Briscoe's Half Price Sale. So honk for half price off the entire store. Hurry, ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
5: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support, and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
6: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today only at House of Travel. TNCs apply.
7: Hum par aapke saath hain Jikash.
8: Yo.
7: Big Radio Pub.
9: ओके हमारा साथ तो यहीं तक था दोस्तों, एंड बहुत ही अच्छा लगा. आज लगभग दो सप्ताह के बाद आपसे मुखातिब हुए थे आफ्टर माय हॉलिडे, एंड आई होप आपने भी उतना एंजॉय किया जितना कि मैंने एंजॉय किया. एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी अब कल शाम 6 पर, जब संडे नाइट मेलोडीज़ में हम अपनी वापसी करेंगे. तो तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखें. जो भी कुछ करने जा रहे हैं, शादी पार्टीज़ इवेंट्स में जा रहे हैं, तो मेक श्योर यू आर सेफ. अगर शराब नवाजी करनी है, मेक श्योर योर सोबर ड्राइवर इज़ सॉर्टेड. हड़बड़ी ना करे, जल्दबाजी ना करे, जो भी कुछ करे समझ बूझ कर और मेक वाइजर डिसीजंस, ऑलवेज मेक बेटर डिसीजंस. तो इसी के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं, मिलेंगे आपसे कल शाम 6 पर. तब तक के लिए यू गाइस हैव अ ग्रेट वीकेंड, हैव अ ग्रेट सैटरडे नाइट. आई होप द टीम दैट यू आर सपोर्टिंग विंस, एंड मिलते हैं कल शाम 6 पर. नमस्कार, गुड नाइट.

with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: HBO Max is the all-killer, no-filler.
2: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
1: Exactly.
2: Right, we'll see. What are they called?
1: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, One Battle After Another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
2: Whoa, okay, I get it. Fair call.
1: HBO Max, all-killer, no-filler. Stream now.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vogue 442 litre side-by-side fridge freezers $699. Midea heat pump dryers $499. Comfy 12-place dishwashers $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: Being fussy is just knowing what you want. So be more fussy.
5: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches, because your cat deserves meals created just for them. Meow. Fussy Cat is made with the meaty taste cats love, delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough, serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat. Be more fussy.
6: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down and still earn smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
7: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: from climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power. Change is constant, and so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
1: Grab a bargain at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson. Score 20% off selected wet and forget, 20% off gold air panel or oil column heaters, or selected accent interior paints, sif $79 each. Only at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson.
2: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ, अच्छा?
2: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह।
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33

0: ये है सैटरडे बॉलीवुड बज।
1: दिला दे घर बना दे घर, दिला दे घर।
2: Oh my God, this is original.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन

0: smile right here.
1: Streaming on Rover.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
5: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
6: The DJ mix only on Hum.

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तू क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. आपका trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
0: DJ Mix, only on Hum.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer. Shower.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: चली ओ चली गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली।

0: अगर बीच को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits.

ब्रांच में है। रबी रे।

0: Streaming on Rover.
1: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ, अच्छा?
1: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह।
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: Flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Professional financials है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो. सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
6: वेलकम टू कबाब्स किचन. आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा.
7: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
6: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
7: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी.
6: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
8: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
9: Join the Tribe!
8: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ से किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Craving ho rahi hai. Us thick aur creamy dahi ki, jaise ghar pe milti thi. To milwate hain aapko Kashish Natural Yogurt se, jiska har spoon hai ekdam delightful. 100% vegetarian, gelatin and gluten free. Perfect hai smoothies banane ke liye. टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा कप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। कशिश नेचुरल योगर्ट।
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
5: बजे हिट गाने।
6: हाँ।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
3: मिसेस सिंह
4: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है जैसे कि क्राइंग विंडोज सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है
6: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है
5: और दैट्स नॉट गुड हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111 रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 Years.
8: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
9: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम
10: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम
11: 1 2 3 4

0: चाहे आप हम के दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
2: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Budget the gun name.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन। Playing Bollywood's biggest hit.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: There's truckloads of savings with every single item in store nationwide. Half price at Briscoe's half price sale. So honk for half price off the entire store. Hurry, ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना चाइल्ड के बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800 46 26 26 टुडे।
4: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: And if you're just joining us after the break, we're talking about holy $10 deals on Uber Eats. Find $10 ding dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
2: Right now, your team could be winning, sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
3: Join our tribe!
2: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
3: join our tribe!
4: Chill, sip, smile.
5: This is Sunday Breakfast.
6: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट्स, मैं हूँ आरजू आपके साथ। एंड मातारी की सेलिब्रेशन तो हो रही है एंड इसकी खुशी में ऑब्वियसली देयर इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइट इंस्टॉलेशंस इन ऑकलैंड सीबीडी। सो इफ यू ट्रैवलिंग टू ऑकलैंड या फिर आप ऑकलैंड से हो, देन डोंट मिस आउट, क्योंकि ये 21 जुलाई को विच इज़ बेसिकली इन टू डेज ये क्लोज हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू सी द स्टनिंग आर्ट एंड लाइट। ये साइलो पार्क से आते तवांगा रोआ से क्वीन स्ट्रीट में, एलियट स्ट्रीट में, फाल्कन लेन, आउटिया स्क्वायर, मायर्स पार्क, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो वी ऑनेस्टली एनकरेज आपकी फैमिली, आपकी फानों के साथ यहाँ पे जाके, या फिर इवन योर फ्रेंड्स और इवन योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू, आप जा सकते हो। इट्स ब्यूटिफुल। मैं कल ही सीबीडी में था एंड लाइक इट वॉज स्टनिंग। वो जो उन्होंने एक गेट जैसा बनाया है and usme you can see the whale ki tail and it's so beautiful, you can see the Maori art you know on it and it's beautiful. So I honestly encourage up jai and like have a beautiful look around and have a little stroll in the CBD, maybe today or ya fir aap kal bhi kar sakte ho, but the last day is 21st July.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हूँ आर्ज आपके साथ श्रीराम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन इनवाइट्स यू टू अखंड रामायण पाठ जो होने वाला है सैटरडे 1st से संडे 2nd अगस्त तक सो सैटरडे को 7 AM में वी हैव रोथ पूजा और उसके बाद 8:15 AM में आरती और 8:45 AM में रामायण पाठ विल स्टार्ट एंड देन इट विल गो थ्रू आउट टिल संडे 10 AM वेयर रामायण पाठ विल एंड एंड 10:30 PM वी हैव हवन एंड आरती एंड ऑफ कोर्स महाप्रसाद विल बी सर्व्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम इफ यू लव टू रजिस्टर ये पाठ के लिए अखंड रामायण पाठ you got to contact 09-836-4647. So that is 09-836-4647. And it's at 11 Brick Street, Henderson.

0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हूँ आरजव के साथ एंड आज इंटरनेशनल आइसक्रीम डे है सो इट्स रूड टू यू नो नॉट सेलिब्रेट एंड नॉट ईट टुडे एंड या आई एम सुपर एक्साइटेड आज शो के बाद आई एम डेफिनेटली ग्रैबिंग सम आइसक्रीम बट सेइंग दैट डक आइलैंड इफ यू हैव अ लोकल डक आइलैंड इन एन एरिया वेयर यू लिव देन यू आर लकी क्योंकि आज फर्स्ट 50 कस्टमर्स एट ऑल द डक आइलैंड locations will get a free scoop and oh actually not just a free scoop and a free chocolate block to match so the chocolate block is from Whittaker's so Whittaker's ne release kiya hai ki they are launching this new flavor called Whittaker's gumdrop block so you know how popular wo green ice cream hai green ice cream with like lollies the goody goody gumdrop so wo ice cream ki inspired ye chocolate hai so ye chocolate you'll also be getting a free block of that chocolate. Oh my god, this is so amazing. I love it. So if you have if you want to grab some free ice cream and a chocolate block, head over to Duck Island and be the first 50 customers today. And yeah, you get those stuff and you can celebrate ice cream release today.

0: Johnny.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: We're planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
4: कौन है?
5: हुनुआ और वेटाकरे।
4: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
5: किधर है हुनुआ?
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.

0: Sunday Breakfast.
1: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सिट्स में हूं आरजब के साथ. सो बॉलीवुड मूवीज जो रिलीज होने वाला है और हो चुका है हमारे न्यूजीलैंड की मूवी थिएटर्स में होइट्स या फिर इवेंट सिनेमाज. शुरू करते हैं धमाल से. धमाल 4 इज नाउ रिलीज हैज बीन रिलीज. इट्स नाउ शोइंग इन द थिएटर्स. ये मूवी में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख है एंड लाइक दीज आर यू ऑब्वियसली धमाल की फ्रेंचाइज की मूवी. फोर्थ सेगमेंट एंड देन 31 जुलाई को वी हैव तेरा यार हूँ मैं. एंड उसके बाद अगस्त में वी हैव प्रहार. ये 6 अगस्त को रिलीज़ होगा. राजकुमार राव इज़ वन ऑफ द लीड एक्टर्स. एंड उसके बाद वी हैव बटवारा 1947 रिलीजिंग 13 अगस्त में, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस डे. इसमें सनी देओल है एंड इट इज़ अ हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा सेंटर्ड अराउंड द इमोशनल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ द 1947 पार्टीशन. उसके बाद आवारापन 2 है. ये रिलीज हुआ 14 अगस्त को एंड इट इज़ एन एक्शन थ्रिलर. एंड उसके बाद वी हैव एक्चुअली सेप्टेम्बर 4th में वी हैव मिर्ज़ापुर द मूवी. सो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ द सीरीज मिर्ज़ापुर देन यू विल लव दिस आई थिंक. सो आई मीन इट कुड बी एनीथिंग क्योंकि समटाइम्स पीपल डोंट लाइक इट व्हेन इट्स यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल कार्टून को लाइक एनिमेशन मूवी को जब लाइव एक्शन बनाते हैं देन पीपल डोंट लाइक इट. सो आई फील लाइक इट्स गोना गेट मिक्स्ड रिव्यूज बट इफ़ यू आर समवन हु वुड लव टू वॉच अ मूवी देन यू माइट एन्जॉय इट. सो ये सेप्टेम्बर 4th में रिलीज होगा.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हूँ आरज़ाव के साथ एंड रिसेंटली निक जोनस ने अपनी रिवील किया है कि हाउ ही स्लिड इनटू प्रियंका चोपड़ा की डीएम्स एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट इट आफ्टर 8 o'clock.

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 ईयर्स।
3: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin binning. And you need to know about it.
4: Join the Tribe!
3: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
4: join the Tribe!
5: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: breakfast on Hum.
1: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीक से समय हुआ आपके साथ. एंड नेक्स्ट अप आई विल बी टेलिंग यू हाउ यू कैन यू नो हैव अ लिटिल बिट ऑफ गेटअवे नेक्स्ट ईयर इन बाली एंड बैंकॉक विद सैंडी एंड रिस्पी.

0: या रॉक एंड रोल। Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
2: Big Points Blitz is back. Get big bonus points at Woolworths, Fresh Choice, Gas and Milk Run with Everyday Rewards. Boost the offers in your Everyday Rewards app, shop and collect up to $15 worth of vouchers. Offer ends 19th of July, T's and C's apply.
3: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
4: Chill, sip, smile.
5: This is Sunday Breakfast.
6: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट्स और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ बाली एंड बैंकॉक में गेटअवे इमेजिन जहाँ पे आपको प्लान नहीं करनी है यू जस्ट पे अ डिप यू नो इन द स्टार्ट एंड देन एवरीथिंग इज कवर्ड फ्लाइट्स अकोमोडेशन एक्टिविटीज एंड इसके साथ यू विल ऑल्सो हैव अ ग्रेट टाइम विद सैंडी एंड रिज़बे क्योंकि दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस बाली एंड बैंकॉक गेटअवे ये सीट्स लिमिटेड है सो इफ यू लव टू चेक इट आउट इफ यू लव टू

go with them. आप अपनी इंटरेस्ट रजिस्टर कर सकते हो आज हेड ओवर टू रोवा जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जॉइन सैंडी रिज़बे ऑन बाली बैंकॉक एडवेंचर एंड देन वंस यू ओपन द वेबसाइट देयर इज़ अ लिंक जहाँ पे आप अपनी इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो कि यू इंटरेस्टेड टू गो एंड बेसिकली इट्स अमेजिंग गेट अवे नेक्स्ट ईयर मार्च 2027 में यहाँ जहाँ पे आइलैंड से सिटी कल्चर फूड एंड इट्स गोना बी मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम बेसिकली स्कूल ट्रिप जैसे बट यू नो in your adulthood mein. And I think it'll be one for, you know, to remember forever. And as someone who's been to Bangkok, oh, that city is beautiful and such a lively city. You'll definitely enjoy. Aur Bali ki stories sab ki Instagram mein dekhkar, I can also say ki wahan pe bhi vibes bahut on hai. So if you're interested, aap search kar sakte ho Rova mein jaakar, join Sandy Rusbe, Bali Bangkok, and aapki interest add kar sakte ho.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर से समय हमारे साथ के साथ एंड इफ यू लव टू लिसन टू 80s की एरा की बॉलीवुड म्यूजिक जस्ट बैक टू बैक देन आप सर्च कर सकते हो हम 80s जुकबॉक्स ऑन रोवा ROVA दैट यू कैन डाउनलोड ऑन प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर एंड द प्ले लिस्ट इज देयर फॉर यू जहाँ पे आप सुन सकते हो बैक टू बैक नॉन स्टॉप 80s

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट सेट्स में हूँ आरजू आपके साथ. एंड इफ यू डिडंट नो अभी वर्ल्ड कप की थर्ड स्पॉट के लिए मैच हो रहा है बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड.

0: Nandri. Namaskaram.
1: आप सुन रहे हो हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स हैं समय हुआ सॉफ्ट के साथ एंड हमारी हम टीम की मेंबर केतन जो हम में भी आप सुन सकते हो रेडियो में उन्होंने अपनी सॉन्ग रिलीज किया है लास्ट फ्राइडे को द सॉन्ग्स नेम इज सफायर 2.0 जो एक ब्यूटीफुल हिंदी रीमेक है ऑफ एड शीरन और अरिजीत सिंह की कोलेब्रेशन अ ग्लोबल हिट नमस्ते सफायर सो इसकी हिंदी रीमेक है एंड दिस सॉन्ग हैज़ बीन सॉन्ग फिल्म्ड डायरेक्टेड एडिटेड बाय मल्टी टैलेंटेड केतन फीचरिंग हिज पावरफुल लिरिक्स रिटन बाय मनप्रीत हु हैज़ रिटन दैट वायरल ट्रैक पापा थोय थोय एंड दिस सॉन्ग इज़ amazing and a 14-month labor of love that started out in a humble garage studio. So I'm gonna play the song right here for you. Enjoy.
2: Yeah.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
2: We've got double glazing.
1: Have you still got that cold, damp feeling?
3: Yeah, we do.
1: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए। Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए।
5: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
6: Chill, sip, smile.
7: This is Sunday Breakfast.
6: Sunday Mood Meter on Hum.
8: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉल विद स्पीकी सेट्स और मैं हूं आरज़ाफ के साथ। अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट सैंडी और रुस्पी की पॉडकास्ट की लेटेस्ट एपिसोड में शनील लाल केम ऑन बोर्ड एंड चैटेड विद देम अबाउट LGBTQ+ राइट्स, द रेसिज्म, रिप्रेजेंटेशन और सर्च फॉर इक्वालिटी। इफ यू डोंट नो शनील लाल इज एन incredible person and a very amazing advocate for equality, racism, representation and the rights for LGBTQ+. They talk about the myths surrounding LGBTQ+ community and also answers the difficult questions and their perspective on creating a more inclusive society in this day and age. Very honest, eye-opening conversations. If you'd love to listen to that, text through Drive to 5599, and it is definitely an important chat. Everyone should listen to.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हुआ है जो आपके साथ और कल वर्ल्ड कप की फाइनल्स है इट इज अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन आई वांट टू नो हमारी हम फैमिली में कौन अर्जेंटीना के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और कौन स्पेन सो लेट मी नो 5599 पर विच टीम यू बैकिंग टुमारो विच टीम यू वांट टू सी विन द वर्ल्ड कप फॉर 2026 5599 पे प्लीज

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई, लिख के दूं क्या?

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हुआ है आपके साथ एंड इफ यू आर अ बिग फैन ऑफ गुड़ी गुड़ी गम ड्रॉप आइसक्रीम और योर किड्स मे बी सो इफ यू हैवन ट्राइड दिस फ्लेवर इट इज़ बेसिकली एक बबल गम वाली फ्लेवर एंड इसके अंदर यू कैन फाइंड डिफरेंट लाइक लॉलीज लाइक गम ड्रॉप लॉलीज एंड लाइक यू नो गमीज जैसा एंड It is gonna be this flavored chocolate that Whittaker is gonna be dropping next, which is tomorrow. Kal ek nayi flavor ki chocolate drop karega. It's called the Whittaker's limited edition Whittaker's gum drop block, and it's gonna be green, your signature light green color, and iske andar 28% cocoa white chocolate with bubblegum flavor and chewy gumdrops hidden throughout the chocolate. Oh my god, this is gonna be so yum. I'm someone who really loves Goody Goody Gumdrop as an ice cream, so I'm very excited ki when this chocolate launch hoga. And yeah, I'm very excited. So if your kids love Goody Goody Gumdrop, they're going to be definitely be asking you for this one. It's going to be releasing tomorrow in all the supermarkets here in Aotearoa.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप. वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे.
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में.
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में हिला उसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पिए से है रखे जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैक कान टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, कोई टिप्पणी पे ना करो टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी कैसी तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उसको भी फाड़ता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: Chill, sip, smile.
3: This is Sunday breakfast.
4: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स हैं, तो मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड 7 साल पहले आज द लायन किंग द लाइव एक्शन मूवी डिज्नी रिलीज्ड इट आज. But like even the Hindi dubbed version. And Hindi dubbed mein aapki Shah Rukh Khan was who voiced Mufasa, and his own son Iron Khan voiced Simba. So this literally dad and son movie maybe. And watching this movie, so many fans noted ki un dono ki voice bahut similar hai, which got me asking, like, you know, thinking like, kya aapki, you know, वॉइस भी आपकी मम्मी या फिर पापा से इतनी मैच करती है कि लाइक यू नो लोग फ़ोन पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है, लाइक दे डोंट नो. बिकॉज माय मम की वॉइस इज वेरी सिमिलर टू माय आंटी की वॉइस. लाइक फॉर मी आई कैन डिफरेंशिएट क्योंकि ऑब्वियसली आई एम हर डॉटर, बट मेरी यू नो लाइक सम ऑफ माई फ्रेंड्स दे थिंक कि माई मम और मेरी आंटी की वॉइस एक ही है. सो लेट मी नो आपकी भी वॉइस किसी से मैच करती है या नहीं. 555 डाउन लाइन पर

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

0: मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये कि शौहर तेरा आदमी अच्छा है।
1: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ। एंड थैंक यू सो मच आज के लिए हैंग आउट विद मी हियर फ्रॉम 6 to 12। आई विल बी बैक सून। या टेक केयर एंड स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट वीक।